0: ആകാശവാണി 102.7 മഞ്ചേരി എഫ് എം മലയാളത്തിന്റെ ഹൃദയതാളം. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തിരുവനന്തപുരം റിലേ പരിപാടികൾ കേൾക്കാം.
1: ആകാശവാണി സമയം 5 മണി.
2: ഏ ആകാശവാണി കാ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര ഹെ ആജ് കെ ഹിന്ദി പ്രസാരണ മേ ആയിയെ സുൻതേ ഹെ സുസ്മിത പി പണിക്കർ കി വാർത്ത ഗ്യാൻ ചതുർവേദി ഓർ വെങ്കി ഉപന്യാസ്.
3: ज्ञान चतुर्वेदी भाषा की दृष्टि से सजग है. वह अपनी भाषा द्वारा परिवेशगत विसंगतियों से पाठकों को परिचित कराते हैं, जिसे उनकी भाषा की जीवंत अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं. व्यंग्य की भाषा सामान्य भाषा से थोड़ी अलग होती है, जिसमें व्यंजक भाव की प्रधानता अधिक होती है. व्यंग्य की भाषा किसी भी प्रकार के लगल पेट में ना पड़कर कथ्य के सटीक एवं सशक्त संप्रेषण पर अपना ध्यान केंद्रित रखती है. विसंगतियों पर प्रहार करना उसकी प्रमुख विशेषता है. किसी भी प्रकार की बनावट उसके संप्रेषण में बाधा डाल सकती है. ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यासों की भाषा व्यंग्य के अनुरूप है. उन्होंने अपनी व्यंग्य भाषा के अंतर्गत तत्सम अरबी फारसी अंग्रेजी देशज मुहावरे लोगोक्तियां और व्यंग्यात्मक सूक्तियों का आधार बनाया है. आधुनिक भाषाओं की रचनाओं में तत्सम शब्द के प्रयोग की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई पड़ती है. तत्सम शब्दों के

प्रति इस प्रकार का आकर्षण उसकी व्यापकता को दर्शाता है। तत्सम शब्दों से तात्पर्य संस्कृत निष्ठ भाषा के प्रयोग से है, जिसमें किसी प्रकार की विशिष्टता विद्यमान हो। ज्ञान चतुर्वेदी ने अपनी भाषा में तत्सम शब्दों को अपने परंपरागत अर्थों में प्रयोग न करके उनको नवीन ध्वनित अर्थों में प्रयोग किया है, जिसके अंतर्गत तत्सम शब्द के प्रयोग द्वारा व्यापक व्यंग्य प्रहार करने का प्रयास किया गया है। व्यंग्यकार ने तत्सम शब्दों का प्रयोग कर भाषा के स्तर पर पुराने प्रतिमानों को तोड़ने का प्रयास किया है। जहां व्यंग्य की भाषा के लिए तत्सम शब्दों का प्रयोग करने से ज्ञान चतुर्वेदी से पूर्व के व्यंग्यकारों ने परहेज किया था, वही वह तत्सम युक्त भाषा को केंद्र में रखकर मरीचिका उपन्यास की रचना करते हैं, जिसके कुछ उदाहरण इस रूप में देखे जा सकते हैं। अयोध्या का दुर्ग विशाल सुदृढ़ तथा अलंक्य है, कहा यही जाता है अन्यथा दुर्ग जैसा है, सो आपके समक्ष है ही। प्राचीर की स्थिति आप देख रहे हैं, दोस्ता प्राय प्राचीर, जीर्ण भोज पत्रों से भुरभुरी जर्जर, यत्र तत्र दरारे, बल्कि सर्वत्र ही कहिए पत्थर टपक रहे हैं या लगभग हिलगे हुए हैं। चूना छर चुका है, चींटें चींटियों के अनगिनत बिल, काई के बड़े बड़े धब्बे, दरारों में उग रहे पीपल के अनेक पौधे, तृणमूल भी। यहाँ तत्सम शब्दों के माध्यम से व्यंग्यकार ने बड़ी ही शालीनता के साथ अयोध्या को चित्रित किया है। यहाँ दुर्ग सुदृढ़ अलंक्य अन्यथा दुर्ग प्राचीर ध्वस्त प्राय प्राचीर जीर्ण भोजपत्रों जर्जर यत्र तत्र सर्वत्र और तृणमूल आदि शब्दों का प्रयोग किया है, जो हिंदी भाषा में ज्योम के त्योम संस्कृत भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जिसे हम प्रकृति रूप में तत्सम शब्द की श्रेणी में रख सकते हैं। जातिवाद पर व्यंग्य करते हुए वह तत्सम शब्दों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं, नीच जातियों का मंदिर प्रवेश वर्जित है, यह सार्वभौमिक सत्य बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको इन जातियों को ज्ञात है कि अयोध्या उन्हें किस सीमा तक मनुष्य मानने को तत्पर है और वह सीमा कितनी संकरी है। भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ प्रयुक्त तत्सम शब्द अपने अर्थ की बोझिलता को प्रकट नहीं करते हैं। यहाँ वर्जित ज्ञान मनुष्य तत्पर और संकरी शब्दों का प्रयोग करते हुए भी व्यंग्यकार ने अर्थ की व्यंग्यात्मकता को बरकरार रखा है। उन्होंने अपनी उपन्यासों की भाषा में तत्सम शब्दावली का प्रयोग सामान्य तथा व्यंग्य दोनों ही अर्थों में किया है। व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी ने अपने उपन्यासों की भाषा में तत्सम शब्दावली को पूर्णतः आधार नहीं बनाया है। आधार तो सामान्य बोलचाल की भाषा ही रही है, किंतु व्यंग्य की प्रखरता के लिए प्रसंगवश तत्सम शब्दों का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। इस अनिवार्यता का कारण विषय चयन एवं कालखंड विशेष को भी माना जा सकता है। हिंदी भाषा के शब्द समूह में अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रमुख स्थान है। भारत लंबे समय तक न केवल मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित रहा है, बल्कि उनके शब्द भंडार से भी निरंतर प्रभावित रहा होता है। शताब्दियों के सहचर्य के कारण अरबी फारसी के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में खुल मिल गए हैं। ज्ञान चतुर्वेदी ने अपने उपन्यासों में इन शब्दों का पर्याप्त प्रयोग किया है, जिसे इस रूप में देखा जा सकता है। नरक यात्रा उपन्यास में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग इस रूप में देखा जा सकता है। पांडे जी ने प्यार से देखती हुई निगाह को और ज्यादा प्यारमंद बनाते हुए अलमेट पर नजर डाली ही थी कि दरवाजा खुला और डॉक्टर शर्मा आए और बोले, राम गलौंट जी के बताए ने कि यहाँ बढ़िया लस्सी रखी है, सो चले आए। ठीक बताया उन्होंने, और भी कुछ बताया किसी ने? उक्त कदन द्वारा व्यंग्यकार ने निगाह फारसी और नजर अरबी के माध्यम से पांडे जी की नियत को बयान किया है। यह दोनों शब्द मूलतः अस्पताल में मरीजों को मिलने वाले खाद्य पदार्थों पर पांडे जी और डॉक्टर शर्मा जैसे डॉक्टरों की कुदृष्टि को भी अभिव्यक्त करते हैं। बारामासी उपन्यास में वह अरबी शब्दों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं, छुट्टन अब तक रम्मू की बहू को देखते हुए ऊब चुके थे, फिर रम्मू का बच्चा भी

काएं काएं करता रहा था और चुप होने पर ही नहीं आ रहा था। तेज गर्मी से परेशान होकर वह रो रहा था, परंतु छुट्टन के सौंदर्य दर्शन में वह विघ्न उत्पन्न कर रहा था। छुट्टन का मन उसे झापड़ रसीद करने को कर रहा था, जो इतनी दूर से संभव नहीं था। छुट्टन थोड़ी देर में ही इस केंके से ऊब गए। फिर उन्होंने यह भी पाया कि इस तरफ दाढ़ी तथा विवाह को लेकर कुछ रोचक आयामों पर चर्चा की गुंजाइश बनी रही है। सो छुट्टन छत पर चल रहे भयन गुच्चन संवाद की दिशा में मुखाबिक हुए। दाढ़ी क्यों कटवाए? छुट्टन ने विरोध प्रकट किया। भयन ने पूछा, क्यों भैया, जिसे पसंद करना है वो दाढ़ी में ही पसंद करे, नहीं तो भाड़ में जाए। छुट्टन ने दाढ़ी पर बहस के सूत्र अपने हाथ में ले लिए। प्रस्तुत कदन में व्यंग्यकार ने रसीद और गुंजाइश फारसी तथा मुखातिब अरबी शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों के माध्यम से छुट्टन की मनस्थिति और विवाह के संदर्भ में भयन गुच्चन के संवाद को देखा जा सकता है, जो अर्थ की व्यापकता को एक नया आयाम प्रदान करते हैं। हमना मरब उपन्यास में भी अरबी फारसी शब्दों के प्रयोग देखे जा सकते हैं। राइस मियां दार्शनिक हो चले, बोले कि मियां मरखट से बड़ा कोई भी इबादत खाना नहीं होता तो वो तो तुम कहो मत। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि इनकी बात सुनने में हमसे भूल हुई होगी, हम समझ ही नहीं पाए, ऊंचा सुनते हैं ना, फिर पास ही रेडियो भी बज रहा था। हमारे खोटे हुए की आदत नाफरमानी की है, तांगे को कहीं भी खुद रोक लेता है। यह खोड़ा हमारी ताबेदारी में नहीं है, बल्कि हमें ही इसकी ताबेदारी में जानिए। उक्त कदन में ज्ञान चतुर्वेदी ने राइस मियां के दार्शनिक पक्ष को इबादत खाना, नाफरमानी और ताबेदारी अरबी फारसी दोनों ही भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, जिसमें मरखट और इबादत खाना को समान मानते हुए दार्शनिक दौर पर मरखट को ही अंतिम पूज्य स्थल के रूप में दर्शाया गया है। घोड़े द्वारा अपने मालिक की बात को ना मानने की प्रवृत्ति को व्यंग्यकार ने नाफरमानी और ताबेदारी अरबी फारसी संयुक्त शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। यहाँ इन शब्दों का प्रयोग बोझिल प्रतीत होता है, परंतु अर्थ की व्यापकता को जानने पर यह शब्द अपना व्यापक अर्थ देते हैं। व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी ने अपने उपन्यासों में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग चरित्रगत, वस्तुगत एवं परिवेशगत विषमताओं, विडंबनाओं का चित्रित करने के लिए अधिक किया है, जिससे रचना में व्यंग्य का सशक्त संप्रेषण संभव हो सकता है। मूलतः व्यंग्यकार ने साधारण बोलचाल के शब्दों को आधार बनाया है, लेकिन जहां आवश्यकता पड़ी है वहां अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करने से परहेज नहीं किया है। ज्ञान चतुर्वेदी ने अपने उपन्यासों की भाषा में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग व्यंग्य को नए ढंग से प्रकट करने के उद्देश्य से किया है। व्यंग्य का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं जगत में व्याप्त विसंगतियों, विषमताओं, विडंबनाओं पर प्रहार करना होता है, इसलिए उन्होंने अपने उपन्यासों में व्यंग्य की समर्थ अभिव्यक्ति के लिए अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग निसंकोच किया है। ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यासों में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों के उदाहरण इस प्रकार है: पोस्टमार्टम, रूम, ड्यूटी, हॉस्टल, डिपार्टमेंट आदि। फिलोसफी, इंजेक्शन, हेडक्वार्टर्स, टैक्स, स्पीड, स्पेशलिस्ट, केचिंग, सिस्टम, ट्रेजडी, एडजस्ट, रजिस्ट्री, ऑटोमेटिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, स्टार्ट स्कूल, मेंटेन। यहाँ प्रयुक्त ड्यूटी, हॉस्टल, डिस्कशन, रिटायरमेंट, सेमिनार, पैसेंजर, प्रैक्टिस, डिग्री, पब्लिक, इंजेक्शन, स्पीड, कोचिंग आदि अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग व्यंग्यकार ने कथन को अधिक तीव्र, मार्मिक एवं स्वाभाविक बनाने के लिए किया है। उन्होंने कहीं भी इन शब्दों का प्रयोग चौंकने के उद्देश्य से नहीं किया है, इसलिए इनके उपन्यास में अंग्रेजी शब्द कहीं भी अटपेट एवं बोझिल नहीं लगते हैं। अभिदु व्यंग्य भाषा स्वाभाविक अंग बनकर सहायक सिद्ध होते हैं। उपन्यासों में व्यंग्य के सशक्त संप्रेषण के लिए ज्ञान चतुर्वेदी ने अंग्रेजी शब्दों का ही चयन नहीं किया।

0: किया है, बल्कि कहीं कहीं अंग्रेजी वाक्यों का भी प्रयोग किया है। उपन्यास में प्रयुक्त अंग्रेजी के यह वाक्य प्रयोग व्यंग्य भाषा को और अधिक सशक्त बनाते हैं। कथानक की दृष्टि से भी पात्रों द्वारा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अधिक सार्थक लगता है। ज्ञान चतुर्वेदी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि अंग्रेजी के शब्दों या वाक्यों की अधिकता ना हो। बारामासी उपन्यास में ज्ञान चतुर्वेदी अंग्रेजी का पूरा वाक्य प्रयोग ना करके हिंदी एवं अंग्रेजी के शब्दों से मिश्रित वाक्य का निर्माण करते हैं, जो आम जीवन व्यवहार में खुल मिल गए हैं। अंग्रेजी वाक्यों के कुछ प्रयोग हम ना मरब उपन्यासों में भी देखे जा सकते हैं। यही कमरा उनका ऑफिस का रजिस्ट्रेशन था, राजगद्दी थी, हेडक्वार्टर था, निगरानी टावर था और सेंट्रल पावर स्टेशन भी था। जवानी से लगाकर बुढ़ापे तक बब्बा के विकास और पदन का साक्षी रहा है यह कमरा। पंडित, पोथी, पत्रा, परंपरा, लोकाचार, कर्मकांड ये सब इसी समेटन की प्रक्रिया के इंतजाम ही तो है। एकदम मूव्स एंड पैक्स जैसी व्यवस्था, बड़ी अजीब सी पैकिंग चल रही है इस सामान की। राम का नाम वे एक एक रेप्लिकेशन एक्शन की भांति बोले जा रहे हैं। राम नाम सत्य है। उपन्यास के पात्रों के माध्यम से ज्ञान चतुर्वेदी अंग्रेजी शब्दों का वाक्य प्रयोग करते हुए नजर आते हैं, जो कहीं कहीं अस्वाभाविक भी लगता है। उपन्यास के कालखंड की दृष्टि से इस प्रकार अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग आम जीवन व्यवहार में बोझिल प्रतीत होता है, परंतु उपन्यास की दृष्टि से ज्ञान चतुर्वेदी ने अपनी व्यंग्य भाषा के माध्यम से इसे सुगम बनाया है।
1: अभी आप सुस्मिता पी पणिकर की वार्ता सुन रहे थे, ज्ञान चतुर्वेदी और व्यंग्य उपन्यास। इसी के साथ आज का हिंदी प्रसारण यही समाप्त होता है। नमस्कार।
2: आकाशवाणी नवदी आघोष भाग आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम निलयम तिरुवनंतपुरम श्रीवराहम श्री चेम्बई मेमोरियल हाल इन वैकुन्नेरं 6 मणिक्ക് नाद नवदी संगीत कचेरी संघടിപ്പിക്കുന്നു। ഈ പരിപാടിയിൽ ശ്രീ

0: ഇനി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ വാർത്തകൾ കേൾക്കാം. ഡെല്ലിറിലെ
1: ഇയം ആകാശവാണി. സമ്പ്രതി വാർത്താഃ ശ്രൂയന്താം. പ്രവാചിക വന്ദന കശ്യപഃ. आदौ मुख्य वार्ताः. राष्ट्रीय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः. भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम् द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्. अस्मिन् मासे चतुर्दश पञ्चदश दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणा सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति. राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे पञ्चदशभ्यः परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्यः राष्ट्रिय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कारान् प्रदत्तवती. अपि च इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स अथ च सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति. अथ वार्ताः विस्तरेण. राष्ट्रिय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः. सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे संस्थया सूचितं यत् छात्रहितं राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाल्याः विश्वसनीयता च रक्षितं एषः निर्णयः स्वीकृतः. संस्थया स्पष्टीकृतं यत् प्रश्नपत्र सम्बद्धानां आक्षेपाणां विस्तृत अन्वेषणार्थम् एषः विषयः केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणाय प्रेषितः. एतदर्थं संस्था पूर्ण सहयोगं प्रदास्यति तथा अन्वेषणाय आवश्यकानि साहित्यानि अभिलेखानि साहाय्यं च उपलब्धं करिष्यति. केन्द्रीय संस्थाभिः आरक्षक बलैः च सह समन्वयनान्तरं प्राप्त सूचनानां आधारेण एषः निर्णयः कृतः. भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम् द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्. गुवाहाटी नगरस्य खानापाड़ा स्थिते पशु चिकित्सा महाविद्यालयस्य प्रांगणे आयोजिते समारोहे राज्यपालः लक्ष्मण प्रसाद आचार्यः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रादापयत्.
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম.
1: ডক্টৰ শর্মা মহোদয়েন সহ অন্য চত্বৰহ অপি মন্ত্ৰীমণ্ডলহ মন্ত্ৰিত্বেন শপথম স্বীকৃতৱন্তহ. তেষু ভাজপা দলস্য পক্ষতহ রামেশ্বর তেলী अजंता नियोग च असम गण परिषद पक्षतः अतुल बोरा तथा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट पक्षतः चरण बोरो च सम्मिलिताः सन्ति. अस्मिन् समारोहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः अनेके केन्द्रीय मंत्रिणः तथा एनडीए शासित राज्यानां मुख्यमंत्रिणः अपि उपस्थिता आसन्. अनेन सह डॉ शर्मा असम राज्यस्य प्रथमः कांग्रेस रहितः नेता अभवत् यः अनवरतम् द्वितीयवारं मुख्यमंत्री पदम् अलंकृतवान्. अस्मिन् मासे चतुर्दश पञ्चदश दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणां सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति. विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षतां करिष्यति. अद्य

0: सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीति स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉ शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यवसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
3: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार

0: को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
1: ICCR समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एवियान सिंह और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन, अमसा कारुनन और MR अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।